जिन्हें अल्लाह ने भेजा। कहो ये जो बार बार एक फरिश्ता आके कान में कुछ कहता है, इन्हीं का नाम जिब्राइल है। ये उन फरिश्तों का सलाम पहुंचा रहे हैं बारहवें के, जिन्हें अभी आने की इजाजत नहीं मिली है। कहा ये अहले जिक्र का मिस्दाक हैं। अगर मैं बात को पहुंचा पा रहा हूं कि इमाम अलैहि सलाम कहते हैं कि मैं गवाही देता हूं कि जो आपकी ज़ुर्रियत से इमाम है वही अल्लाह के नुमाइंदे हैं, वही हुज्जतुल्लाह है, वही उर्वतुल वुस्का है। उर्वतुल वुस्का, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। मौला फरमाते हैं वो उर्वतुल वुस्का जिसके लिए कहा कि जिनकी विलायत से मुतमस्सिक रहना, उनकी विलायत के बगैर कोई अमल कबूल नहीं होगा, का वो यही बारह है। और कहे हुसैन वो आप ही की जुर्रियत से आने वाले नौ इमाम है। अब यहां पर रोक के जुमले को पेश कर रहा हूं और उसके बाद फिर मैं उस जावी की तरफ ले जाना चाहता हूं। तो ज़िदाने गिरामी, इन जुमलों में सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कि आप ज़की हैं, हादी हैं, महदी हैं, ये सारे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि आप वो हैं और आप ही की जुर्रियत से बाकी वही सिफात रखने वाले हैं। तो अब आइए जरा, ये 14 अल्लाह के नुमाइंदे हैं और अल्लाह ने इन 14 को अपना नुमाइंदा बना के भेजा है। तो कुछ ऐसी सिफात अल्लाह दे के भेजेगा कि मालूम हो दुनिया को कि ये अल्लाह के नुमाइंदे हैं। कुछ ऐसी इनमें सिफात होनी चाहिए कि मालूम हो ये अल्लाह के नुमाइंदे। तवज्जो है मजमे की, ये 14 अल्लाह के नुमाइंदे हैं। तो कुछ ना कुछ सिफात इलाहिया का जहूर होना चाहिए, मजहर हो ये सिफात इलाहिया का, कि पता चले ये अल्लाह के नुमाइंदे हैं। अब वो महमूद है इसलिए उसने मोहम्मद को भेजा, वो आला है उसने अली को भेजा, वो फातिर समावात वल अर्द है उसने फातिमा को भेजा, वो मोहसिन है उसने हसन को भेजा, वो कदीमुल एहसान है उसने हुसैन को भेजा, वो माबूदो मस्जूद है उसने आबिदो सज्जाद को भेजा, वो अलीम व खबीर है उसने बाकिरुल उलूम को भेजा, वो अस्दकुल कायलीन है उसने जाफर सादिक को भेजा, गैज़ व गज़ब पे उसे काबू था उसने मूसा काज़िम को भेजा, मरज़ात का मरकज उसकी जात थी, मर्जियां सारी उसकी थी, उसने अली इब्ने मूसा रज़ा को भेजा, तकवा वो अता करता उसने मोहम्मद तकी को भेजा, नकावतें और पाकिजगियां उसके लिए थी उसने अली नकी को भेजा, हैबत उसकी थी उसने हसन अस्करी को भेजा, वो गैब मुतलक था उसने महदी मुंतजर को भेजा। अब 14 उसके नुमाइंदे हैं, उन्हें देखने से पता चलेगा ये उसके नुमाइंदे हैं, सिफात बताएंगी ये उसके नुमाइंदे हैं। कुछ ऐसी सिफात होंगी कि हर आदमी देखने वाला गवाही देगा, परवरदिगारा हम गवाही देते हैं ये तेरी हुज्जत है। जो हुज्जतुल्लाह होंगे, अब इस ज़ियारत में इमाम ने कहा हुज्जतुल्लाह यही है, हुज्जत खुदा यही है। ए हुसैन आप हुज्जत खुदा हैं और जो आपकी ज़ुर्रियत से आएंगे वो हुज्जत खुदा है। अज़ीज़ाने गिरामी, अब जो हुज्जत खुदा होगा उसकी सिफात बताएंगी ये हुज्जत खुदा है, ये सिफात बता रही होंगी। अब वो कौन सी सिफात हैं? उनका इल्म ऐसा है कि कभी कोई उन्हें ये नहीं कह सकता। पहली इल्म, पहली सिफत है इल्म, कि आइम अलैहिस्सलाम के इल्म से मुताल्लिक कभी कोई शुभा नहीं कर सकता। इल्म ऐसा है, इल्म अहले बैत अलैहिस्सलाम का, इन सब में इल्म ऐसा कि कोई कभी ये नहीं कह सकता। मैंने सवाल किया, इमाम ने कहा कि मैं सोच के बताऊंगा, मैं पूछ के बताऊंगा। जिस जबान में सवाल आएगा उसी जबान में जवाब जाएगा, जिस रफ्तार से सवाल आएगा उसी रफ्तार से जवाब आएगा। यहां तक के बाजू का सवाल नहीं आया, इमाम ने फौरन कहा। नवे इमाम अलैहिस्सलाम 9 बरस के थे जब लोग इमाम के इम्तिहान के लिए आए थे, बगदाद में सब जमा हो गए थे, सवाल कर रहे थे। तो इमाम ने देखा चार अफराद आए, इमाम ने कहा हराम में आगे चलो। कहा कि अभी हमने सवाल ही नहीं किया। इमाम ने कहा तुम फुला बस्ती से इकट्ठे नहीं चले क्या? तुमने चारों ने मिलकर फैसला नहीं किया था इमाम से पूछेंगे ये चीज हराम है या हलाल है? क्या यही तो हमने सोचा था? इमाम ने कहा तो जवाब नहीं दे दिया, हराम है फिर भी मुंतजर हो? इमाम ने इशारा किया कि आगे बढ़ते रहो, सवाल करने वाले बहुत ज्यादा है, मैं जल्दी जल्दी सबके जवाब देना चाहता हूं। हम ऐसों की इमामत की कायल हैं कि जो सवाल सुनने से पहले जवाब देते हैं। हम ऐसों को इमाम नहीं मानते जो दीवार के पीछे देख के ना बता सके। हम ऐसे की इमामत के कायल हैं जो पहाड़ के पीछे देख के बताए लश्कर की तादाद कितनी है।
कितने मेरे हाथों मारे जा

तो रिवायत के अल्फाज हैं कि काफी ताखीर से रात के वक्त पहुंचे थे और जब जनाब हबीब पहुंचे तो खुद जनाब सैयद शहदा ने दो अफराद के इस्तकबाल के लिए जनाब अब्बास से कहा कि इस्तकबाल करो। एक जनाब हुर के लिए कहा था और एक जनाब हबीब। जनाब हबीब पहले आए, जनाब हुर शब आशूर के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आए, जनाब हबीब पहले आए तो कहा कि अब्बास इस्तकबाल करो, मेरा चाहने वाला आ रहा, कूफे से मेरा चाहने वाला पहुंचा। जनाब हबीब और जनाब मुस्लिम इब्ने उसजा इकट्ठे आए थे और जनाब हबीब का गुलाम। जैसे पहुंचे तो जनाब अब्बास ने इस्तकबाल किया तो जनाब हबीब ने फौरन सवाल किया कि मेरे आका यहां मौला अपने जंगलों में डेरे डाल लिए, और जब आए तो मौला के कदमों के बोसे दे रहे थे। जनाब हबीब बहुत ज़ईफ़ुल उम्र है, बहुत बूढ़े हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, उसके बावजूद कदमों को चूम रहे थे, फिर हाथों को चूमा। सैयदुश्शहदा ने उठा के सीने से लगाया। अब आप सोचें कि इसका इतना मकाम हो कि सैयदुश्शहदा सीने से लगाया, प्यार किया तो फौरन उन्होंने सवाल किया, कहा कि मौला यहां आप इस तरह तन्हाई के अंदर। तो जनाब ज़ैनब कुबरा ने सवाल किया किसी कनीज से या शायद जनाब फिज़ा से या किसी और कनीज से सवाल किया, कहा क्या बात है, मेरा भाई इस तरह से इस्तकबाल कर रहा, कौन आया? कभी भी हबीब इब्ने मुज़ाहिर आए का सहाबी रसूल है, मेरे नाना के सहाबी, मेरे बाबा के असहाब में, मेरे भैया हसन के असहाब में। का हबीब से कहना ज़ैनब ने सलाम कहा। तो जनाब हबीब को जब कहा ना किसी कनीज ने आके कहा, जनाब फिज़ा से मुतालिक है मशहूर, जनाब फिज़ा ने कहा कि हबीब आपको अली की बेटी ने सलाम कहा, तो सब मुअर्रखीन ने लिखा कि ज़ारो कतार रोने लगे। जनाब हबीब बहुत रोए और एक मरतबा जनाब सैयदुश्शहदा से कहा मौला बहनों को साथ ले आए, मौला इतनी गुर्बत आ गई, इतना बुरा वक्त आ गया है कि बहनें साथ आई हैं आपके। तो कहा हबीब जो आगे आजमाइश है वो इससे ज्यादा बड़ी है। तो अब यहां पे सुनेंगे, मैं भी पेश करूंगा, आहिस्ता आहिस्ता चलूंगा। तो जनाब हबीब के लिए कहा कि नहीं, अब जनाब हबीब में मुज़ाहिर कौन है जो जनाब सैयदुश्शहदा की बारगाह में जाएगा, वो दो मरतबा ज़ियारत करेगा, दो मरतबा। उसके बावजूद भी जब किसी बहुत बड़े आलिम ने ख्वाब में देखा तो सवाल किया, हबीब कोई हसरत है आपकी जो इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए जाता है, दो मरतबा आपकी ज़ियारत करता है, फिर भी कोई हसरत रह गई? कहाँ एक हसरत है। कहा आपकी कोई हसरत है? कहाँ एक हसरत। कहा क्या? कहा हुसैन की मजलिस में शिरकत करने की हसरत। कहा हम मजलिस हुसैन में आए, ये हसरत है। कहा कि मौला ए हबीब क्यों? कहा कि तुम नहीं जानते फर्श अज़ा का सवाब कितना है। कहा जब पहला आदमी आके बैठता है उससे पहले से मलाइका मौजूद होते हैं, कहा और हाथे में ले लेते हैं उस जगह को, परवरदिगार भेजता है कि यहां अभी मजलिस होने वाली है। कहा चारों तरफ से फरिश्ते हाथे में ले लेते हैं और अपने हाथे में लेने के बाद उनके लिए इस्तगफार करते रहते हैं, उन पे दुरूद भेजते रहते हैं और कहते हैं कि तुम पे आफरीन हो के खालिक ने तुम्हारे लिए हमें भेजा। कहा कि अच्छा हम लोग तो दुनिया के अंदर तबर्रुक देते हैं, उनके लिए भी कोई तबर्रुक होता है? कहा हाँ, उनका तबर्रुक ये हुसैन इब्ने अली पे जो आंसू बहाए जाते हैं वो ये तबर्रुक में लेके जाते हैं। कहा और वो उन फरिश्तों को तबर्रुक में बांटते हैं ये आंसू जो इस मजलिस में नहीं आए होते, कहते हैं कि ये आपके लिए तबर्रुक लाया हूं मैं फर्श अज़ा से। तो इसलिए एक तो अपने बच्चों को फर्श अज़ा की आदत डाले, पहली जो मेरी आपके लिए नसीहत समझ लें, वसीयत समझ लें, जो भी समझ लीजिए इसको, गुजारिश समझ लें, दरख्वास्त समझ लें कि सब के सब अपने बच्चों को इस फर्श अज़ा की आदत जरूर डालें। मैंने कहा था कुछ नौजवानों के लिए जुमले पेश करूंगा, अब मुझे नहीं मालूम कितने लोग सुनना चाह रहे हैं, कितने लोग। तो पहली बात यह है मेरी आपसे सबसे दरख्वास्त है, अपने बच्चों को, आप खुद मजलिस में आते हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये आदत बच्चों को मुंतकिल नहीं कर रहे तो फिर ये अभी कामयाबी नहीं है, ये अपने बच्चों में मुंतकिल करना जरूरी है। खुद अपने बच्चों को आदत डालें फर्श अज़ा पे आना, ये बहुत बड़ी सआदत है। मैं आखिर में पेश करूंगा अभी एक दो रिवायात जो फर्श अज़ा से मुतालिक है। दूसरी जो चंद जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में पेश किए, मौला फरमाते हैं, मैं फजाइल तफसील से पेश कर चुका हूं, आप सुन लीजिए कि चंद मतलब। मौला नहजुल बलागा में फरमाते हैं कि तीन हक हैं, हमेशा माँ बाप के हुकूक को बयान किया जाता है, माँ बाप के बेइंतहा हुकूक हैं। हमारे गर्दनों पे सबसे बड़ा हक अल्लाह नबी और इमाम के बाद हमारे माँ बाप का है, और हुकूक वालिदैन

का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, जिसको वालिदैन आंख कर दें उसका हिसाब किताब नहीं है। हत्ता अगर जिंदगी में बाज़ औक़ात वालिदैन नाराज होते हैं तो मरने के बाद राजी हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात जिंदगी में राजी होते हैं मरने के बाद नाराज हो जाते हैं, इसलिए हमेशा उनको राजी रखने की कोशिश करते रहें। जब मजलिस में आ रहे हैं तो फौरन नियत कर लें कि इस मजलिस का सवाब मैं अपने माँ बाप को भी दे रहा हूँ। अल्लाह के यहाँ सवाब की कमी नहीं है, मुस्तहब आमाल में कई लोगों की तरफ से नियत की जा सकती है और सवाब सबको बराबर मिलता है, आपका भी सवाब कम नहीं होगा, उन्हें भी सवाब मिलता रहेगा। अगर वालदैन जिंदा भी हैं तो नियत कर लें कि मैं अपने वालदैन की तरफ से मजलिस में जा रहा हूँ, पर बताने लल्ला वहीं से घर से जब चलते हैं वहीं से सवाब शुरू हो जाता है आपका, पता नहीं बाद में वादे कर पा रहा हूँ या नहीं, वहीं से सवाब लिखना मलाइका शुरू हो जाते हैं जब आप चलते हैं। अब वो आप फौरन सवाब कितने लोगों में चाहे तकसीम कर दें, अब आपकी अपनी नियत है, किसी अल्लाह के यहाँ सवाब की कमी नहीं है। 40 की नियत करेंगे, 400 की नियत करेंगे, अल्लाह सबको सवाब देता चला जाएगा। तो आप घर से नियत करके चलेंगे, मैं अपनी तरफ से नहीं, अपने माँ बाप की तरफ से भी जा रहा हूँ, अपने दादा दादी की तरफ से, अपने नाना नानी की तरफ से, जितने भी बुजुर्ग हैं सबकी तरफ से नियत कर लीजिए, उनकी अरवाह आपसे खुश होंगी, राजी होंगी। और मैं आज तक नहीं भूल सकता जो सबसे पहले उंगली पकड़ के लाने वाले फर्श अज़ा पे हमारे बुजुर्ग हैं, उन्हें कैसे भुलाया जा सकता है। तो इसलिए उन सबको याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक अम्बौला फरमाते हैं नहजुल बलागा में कि तीन हक हमेशा वालिदैन के हुकूक पेश किए जाते हैं, मैं आज औलाद के हुकूक पेश करना चाहता हूँ। पहला हक ये है कि औलाद को फर्ज अज़ा पे लाएं कि यहाँ से इल्म भी मिलता है, मारिफत भी मिलती है, सवाब भी मिलता है और अदब व आदाब भी मिलते हैं। मजलिस के अपने आदाब हैं, मजलिस में आने के आदाब हैं, सवाब है, इंसान दूसरों को देखता है, बुजुर्ग कैसे बैठते हैं, कौन कैसे आता है, किस तरह से मजलिस की जाती है, तकद्दस जो मजलिस का है उसको बरकरार रखने के लिए औलाद को बचपने से मजलिसों में लाने की आदत डालें। नहजुल बलागा में मौला कहते हैं कि हक़ुल वलद अलल वालिद, क्या क्या हक हैं, मौला फरमाते तीन हक हैं, अय्यु हसना इस्मा, सबसे पहला हक औलाद का माँ बाप पे ये है कि माँ बाप औलाद को अच्छा नाम दें, औलाद का नाम अच्छा रखो। और नाम कैसे रखो, अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम बेहतरीन नाम है। अब कई मरतबा लोग कहते हैं कि नहीं मोहम्मद या अली या हसन हुसैन तो नाम बहुत आम है, तो अज़ीज़ाने गिरामी अहले बैत अलैहिस्सलाम जानते थे, और जनाब अब्दुल मुत्तलिब से जब सवाल किया गया आपने अपने पोते का नाम मोहम्मद क्यों रखा, कहा क्योंकि मैं दो चीज़ें देख रहा हूँ, एक तो मेरे इस पोते का नाम बहुत ज़्यादा होगा और सबसे ज़्यादा नाम रखा भी इसी का जाएगा, तो नाम रखा ज़्यादा जाएगा। पैगंबर इस्लाम ने खुद से कहा कि नाम रखो, अहले बैत पे नाम रखो, और सबसे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि अहले बैत के नामों को आम किया जाए, उनके अलकाब को, उनके मुख्तलिफ जो अलकाब हैं उनको रखा जाए, बच्चों के बच्चियों के, तो नाम अच्छा रखना बहुत ज़रूरी। यहाँ तक कि जब छठे इमाम से किसी ने कहा कि मौला मेरे यहाँ बेटी की विलादत हुई है, मौला ने कहा कि बहुत खुशी की बात है, नाम तुमने क्या रखा अपनी बेटी का, तो कहा मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा। जैसे कहा ना फातिमा रखा तो इमाम ज़ारो कतार रोने लगे, बहुत रोए, इतना रोए कि मौला के आंसुओं से ना आपकी रीशे मुबारक तर हो गया। कहा मौला मैं तो सोच रहा था बहुत खुश होंगे, आप तो बहुत ज़्यादा गिरिया कर रहे हैं। कहा कि खुशी के आंसू हैं। कहा मुझे बहुत खुशी है कि तूने हमारी जद्दा जनाब सैयदा के नाम पे, मेरी दादी के नाम पे अपने बच्ची का नाम रखा, लेकिन एक बात याद रखना, जब नाम फातिमा रख दिया तो अब उसे कभी गाली ना देना। इमाम ने पहला जुमला कहा उसे कभी गाली ना देना, फिर इमाम ने दूसरा जुमला कहा, कहा अब कभी उसे तमाचा ना मारना, कहा उस पर कभी जुल्म ना करना। कहा देखो कभी भी सफर में जाओ ना और बच्चों के लिए तोहफा लेके आओ तो सबसे पहले उस बच्ची को तोहफा देना जिसका नाम फातिमा हो। कहा मौला अगर तोहफे के लिए पैसे ना हो तो कहा सिर्फ एक तोहफा लेके आना और उस बच्ची को देना जिसका नाम फातिमा हो। कहा जब तुमने हमारी दादी पे नाम फातिमा रख दिया तो फिर उसका ख्याल जरूर रखना। कहा जब सफर में जाने लगो तो सबसे आखिर में उससे मिलना, जब वापस आओ तो सबसे पहले उससे मिलना, जब बाकी बच्चे पूछें तो कहना कि इसका नाम फातिमा है, बीबी की वजह से इसका एहतराम कर रहा हूं। अगर मंसूब हो जाए बीबी से इतना एहतराम है, आप सोचिए बीबी का कितना एहतराम है। तो मौलाना ने फरमाया पहला हक यह है औलाद का कि अय्यु हसना इस्मा, कि बच्चों का नाम प्यारा रख। मुझे नहीं मालूम कितने लोग सुनना चाह रहे हैं। तो इमाम ने कहा कि पहला हक यह है कि बच्चे का नाम अच्छा रखो। दूसरा इमाम फरमाते हैं अय्यु अदबहु, अपने बच्चों के आदाब अच्छे हों। तुम्हारे हमेशा कोशिश करना कि अदब व आदाब बच्चों को जरूर सिखाना। जब भी कोई बेअदबी करता है ना तो इंसान फौरन पलट के कहता है माँ बाप ने यही सिखाया था। तो अज़ीज़ाने गिरामी औलाद को अदब अच्छा सिखाएं। मौला कहते हैं माँ बाप के किरदार की अक्कासी बच्चा किया करता है, इसलिए अपने बच्चों को आदाब अच्छे सिखाना, अखलाक बहुत अच्छा होना चाहिए, अपने बच्चों के अखलाक अच्छे।
مولا تیسری صفت کہ ان یعلمہ القرآن، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا ضرور سکھانا۔

दानिश्वर सब बहुत कुछ गुजरे हैं, लेकिन आज तक किसी ने जिंदगी की तारीफ नहीं की है। लाइफ क्या है कोई नहीं बता सका, आसार बताए हैं, जिंदगी की निशानियां बताई हैं, लेकिन जिंदगी की तारीफ नहीं बता सका। किसी ने कहा कि खाने पीने का नाम जिंदगी है, किसी ने कहा कि चलने फिरने का नाम जिंदगी है, किसी ने कहा कि उठने बैठने और सोने का नाम जिंदगी है। तो ये तो हैवानी ज़िंदगी हुई, हैवान भी खाते पीते हैं, हैवान भी चलते फिरते हैं, हैवान भी हरकत करते हैं। तो फ़र्क होना चाहिए हैवानी ज़िंदगी में और इंसानी ज़िंदगी में। एक बहुत बड़ा मसला है इंसान की ज़िंदगी में। कभी कभी ऐसे होता है कि जब तक ज़िंदगी रहती है ज़िंदगी समझ में नहीं आती, जब मौत आती है तो समझ में आता है। जिस तरह से मौला अमीर ने फरमाया कि अन्नासो नियामोन व इदा मूतु इंतबहु, लोग ज़िंदगी में सो रहे हैं, जब मौत आएगी तो बेदार होंगे। यानी मौत को यहाँ बेदारी से ताबीर किया गया कि मौत आएगी तो बेदार होंगे, और उस वक्त बेदार होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब बेदार होना चाहिए था उस वक्त बेदार नहीं हुए। ज़िंदगी में बेदार होते तो फिर मौत के बाद की बेदारी का बात ही कुछ और होती। तो अज़ीज़ो, लाइफ और ज़िंदगी एक बहुत बड़ा अहम सब्जेक्ट है हमारी ज़िंदगी में। संभलते संभलते समझते समझते ज़िंदगी का कारवां रवां दवां हो जाता है और ज़िंदगी यूं ही गुज़र जाती है, हासिल कुछ भी नहीं होता। रिवायात में है कि इंसानी ज़िंदगी के 6 मरहले हैं, 6 स्टेप्स हैं। हर मर्तबा बाद वाले को समझना बहुत मुश्किल है। पहले हम बाप के सुलबों में थे, ज़िंदगी का एक मरहला कि जब इंसान अपने बाप के सुलबों में था। अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल असलाब शामिखा, बाप के सुलबों में थे। माँ के रहम की ज़िंदगी क्या है हमें नहीं मालूम होता था। ये एक ज़िंदगी का मरहला था। ज़िंदगी का दूसरा मरहला, सेकेंड स्टेप, जब हम मुंतकिल हुए माँ के शिकम में। माँ के शिकम में भी ज़िंदगी गुजारी है 9 महीने तक, ये ज़िंदगी है। वहाँ हमेशा रहने के लिए हमें नहीं रखा गया था, बल्कि एक मखसूस ज़माना था, एक मखसूस पीरियड था जिसमें हमें गुजारना था। वहाँ रहने के लिए नहीं रखा गया था, बल्कि कामिल होने के लिए रखा गया था, ताकि कामिल हो जाएं तो फिर इस दुनिया में आएं। ये माँ के शिकम में जब हम थे तो ये दुनिया की ज़िंदगी हमें समझ में नहीं आ रही थी। अगर छोटा बच्चा जो माँ के शिकम में है उससे पूछ लिया जाए कि तुम्हें बाद में एक अलग ज़िंदगी के लिए तैयार किया जा रहा है, वो दुनिया की ज़िंदगी है, बड़े बड़े मकानात होंगे, बहुत बड़ी ज़मीन होगी, बड़े बड़े घर होंगे, तो क्या ये दुनिया की ज़िंदगी को वो छोटा सा बच्चा समझ पाएगा? अगर शऊर भी रखता होगा तो ये समझ में नहीं पाएगा। कहेगा इतने इतने बड़े मकानात, इतनी बड़ी ज़िंदगी, इतनी बड़ी सड़कें, इतनी बड़ी, कुछ भी नहीं समझ पाएगा। वो बस यही कहेगा कि मुझे यहाँ माँ के शिकम में जो पैर फैलाने की जगह नहीं है, इतनी मुझे जगह दे दी जाए कि मैं पैर फैला सकूं। लेकिन जैसे दुनिया में आया तो सिर्फ पैर फैलाने पे इक्तफा नहीं हुई, एक कमरे का घर चाह रहा था, 2 कमरे मिल गए, फिर 4 कमरे की हवस आई, 6 कमरे की हवस आई, एक माला था, 2 माले की हवस आई। ऐसे लगता है कि गोया हमेशा यहाँ रहना है। जनाबे दानियाल नबी 600 साल इस दुनिया में ज़िंदा रहे हैं, उन्होंने कोई घर नहीं बनाया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप घर मत बनाइए, घर बनाइए, मोमिन की सआदत में से है कि उसका घर अच्छा हो, गुशादा हो, बड़ा हो, अच्छा घर हो, लेकिन घर से अटैचमेंट ना हो, घर से वाबस्तगी ना हो, घर से ताल्लुक़ ना हो, अपनी वाबस्तगी ज़ाते परवरदिगार से हो। जनाबे दानियाल 600 साल इस दुनिया में रहे, कोई घर ही नहीं बनाया उन्होंने। उनसे कहा गया कि

आखिरी जमाने में लोग आएंगे, बहुत मजबूत घर बनाएंगे, पक्के घर बनाएंगे, आरसीसी के बहुत मजबूत घर बनाएंगे। ऐसे मजबूत घर के जलजला भी आए तो हिले नहीं। तो जनाबे दानियाल ने कहा कि यकीनन उनकी उम्रें हज़ारों साल की होंगी। जब इतने मजबूत घर बना रहे हैं तो इसका मतलब ये कि बहुत हज़ारों साल जिएंगे। तो उनसे कहा गया कि नहीं, उनकी उम्रें तो बहुत कम हैं, 60-70-80 साल की उम्रें होंगी। तो जनाबे दानियाल ने मुस्कुरा कर कहा कि अगर मुख्तसर इतनी ज़िंदगी है तो मैं एक सजदे में गुजार दूँ। तो हर मरतबा ज़िंदगी का दूसरे मरतबे को समझना बहुत मुश्किल है। ज़िंदगी के 6 मरहले, 6 स्टेप्स। तो पहला बाप के सुलबों में, दूसरा माँ के रहम में, और तीसरा ज़िंदगी का मरहला ये हमारा है। रहम मादर से दुनिया में आए हैं और ये ज़िंदगी का मरहला शुरू हुआ, ये थर्ड स्टेप है। अब जब हम थर्ड स्टेप में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसके बाद वाली ज़िंदगी हमें समझ में नहीं आती। बताया जाता है कि बरज़ख की ज़िंदगी होगी, कब्र से लेकर क़यामत तक। ये लंबा अरसा है, एक लंबी मुद्दत है, जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है। ये आलम मिसाल है, ये एक ज़िंदगी है, रूहों की ज़िंदगी। ये ज़िंदगी हमें समझ में नहीं आती। ये और बात है कि रिवायात में तफसील से इसके बारे में बताया गया है, लेकिन समझना मुश्किल है, इसलिए कि हम उस मरहले से गुज़रे नहीं हैं। जब तक माँ के शिकम में थे तो ये दुनिया की ज़िंदगी समझ में नहीं आ रही थी। जब दुनिया की ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो बरज़ख की ज़िंदगी समझ में नहीं आती। बरज़ख की ज़िंदगी, ज़िंदगी का चौथा मरहला। क़यामत की ज़िंदगी, ज़िंदगी का पाँचवा मरहला। और ज़िंदगी का छठवां मरहला वो जन्नत और जहन्नम की ज़िंदगी। हुम फीहा खालिदून, खुलूद की ज़िंदगी, अबदी ज़िंदगी, जहाँ गम अंदूह ना होगा, हमेशा के लिए होंगे। जो जहन्नम में जाएगा वो हमेशा जहन्नम में रहेगा, और जो जन्नत में जाएगा वो हमेशा जन्नत में रहेगा। यहाँ कोई मुद्दत नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, कुछ भी लिमिट नहीं है। इसीलिए ज़िंदगी को बड़ी सोच समझ के गुजारो कि ज़िंदगी का एक एक लम्हा हज़ारों साल के बराबर हो सकता है, अगर आपने खुदा के लिए वो लम्हा गुजारा। तो ज़िंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। हैवानी ज़िंदगी, उससे बेहतर फरिश्तों की ज़िंदगी। देखिए हैवानी ज़िंदगी क्या है, वहाँ ज़रूरत है, हैवानों के पास सिर्फ ज़रूरत है, ख्वाहिशात हैं, वहाँ अक्ल नहीं है। हैवान सिर्फ पेट भरना जानते हैं, वो हलाल और हराम के चक्कर में आते ही नहीं हैं। क्या हलाल, क्या हराम, क्या जायज़, क्या नाजायज़, अपने मालिक का खा रहे हैं या किसी और का खा रहे हैं, वो चक्कर में पड़ते ही नहीं, इसलिए कि उनके पास शरीयत नहीं है, उनके पास दीन नहीं है। क्यों दीन नहीं है, इसलिए कि अक्ल नहीं है। दीन वहाँ होता है जहाँ अक्ल होती है, जहाँ अक्ल नहीं वहाँ दीन भी नहीं है। हैवानों में दीन नहीं है, अक्ल नहीं है। क्यों दीन नहीं है, अक्ल नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूँ किसी मकसद के लिए आपको। इसलिए उनके पास बेहयाई है, हया नहीं है उनके पास, बेशर्मी है, बेहयाई है। तो पता चला कि जहाँ बेहयाई है वहाँ बेदीनी है, जहाँ बेदीनी है वहाँ बेअक्ली है, अक्ल नहीं होती। हमसे कुछ लोग कहते हैं कि मौलाना ये आप जो पर्दे के लिए कहते हैं, हिजाब के लिए कहते हैं, ज़माना बहुत तरक्की कर गया है, मॉडर्न ज़माना है, अभी आप 1400 साल पहले की बात कर रहे हैं, बहुत दुनिया तरक्की कर गई है, अब तकाजा ये कि आप पर्दा ना हो, पर्दे की ज़रूरत नहीं है। तरक्की याफ्ता होने की अलामत ये कि अब पर्दे की ज़रूरत नहीं है। आयतुल्लाह शहीद मुताहरी का बहुत खूबसूरत जुमला है यहाँ पर, अगर बेपर्दगी, पूरी तवज्जो से सुनिएगा, मेरी माँ बहनें भी सुने, अगर बेपर्दगी तरक्की की अलामत है तो हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैवान हैं, जानवर हैं, उनके पास कोई पर्दा ही नहीं है। तो पता चला कि बेपर्दगी तरक्की की अलामत नहीं है, हैवानियत की अलामत है। बहुत अहम रोल है एक खातून का, एक औरत का बहुत अहम रोल है। हमारी तबलीग, मैं अगर यहाँ मेंबर पर बैठ के तबलीग कर रहा हूँ तो ये तबलीग आप तक महदूद है, लेकिन मेरी कोई बहन, कोई मेरी माँ चादर ओढ़कर पूरे हिजाब के साथ जब घर से बाहर निकलती है तो वो बेहतरीन तबलीग है। दुश्मनों के रुखसारों पर वो तमाचा मार रही है, बेदीनों के रुखसारों पर वो तमाचा है। जो
پردے کا کے خلاف بولتے ہیں ان کے خلاف یہ خود

तुम अपने इमाम जैसा बन नहीं सकते, इसलिए कि तुम्हारा इमाम वो है जो इस दुनियावी जिंदगी से पहनने के लिए सिर्फ दो लिबास और खाने के लिए सिर्फ दो रोटियां इस्तेमाल करता है सूखी। فَإِنَّهُ لَا تَقْدِرُونَ عَلَىٰ ذَلِكَ, मैं जानता हूं तुम इसकी कुदरत नहीं रखते, तुम ये काम कर नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे लिए जो इमाम तवक्को रखते हैं, क्या रखते हैं, सुनिए, पाको पाकीज़ा ज़िंदगी के लिए, तैयब व ताहिर के ज़िंदगी के लिए इमाम फरमाते हैं, उईनूनी बेवराइन व इज्तिहाद व इफ्फतिन व सिदाद। तुम इमाम बन नहीं सकते, इमाम बनने की कोशिश ना करो, लेकिन तुम मेरी मदद करो वरा में, तकवे में, अपने आप को हराम चीज़ों से बचाओ, तो गोया ये इमाम की मदद है। वज्तिहाद, इज्तिहाद में, इज्तिहाद का मतलब वो इज्तिहाद नहीं जो मुश्तहिदीन इज्तिहाद करते हैं, ये इज्तिहाद यानी तलाश, कोशिश, मेहनत, इसलिए कि तुम अली के मानने वाले हो कि जिसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी उम्र में हज़ार हज़ार खजूर के दरख्त लगाए, मुसलसल मेहनत, कोशिश और इज्तिहाद का नतीजा। लोगों ने पूछा कि जब आप इतनी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, इतने दरख्त क्यों लगा रहे हैं? इमाम ने कहा कि मैं दरख्त इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आइंदा आने वाली नस्लें इस्तेमाल करें। बेवराइन व इज्तिहादिन व इफ्फत, पाक दामनी, मोमिन के लिए ज़रूरी है कि वह पाक दामन रहे, उसकी आँखें पाक हों, उसकी ज़िंदगी पाको पाकिज़ा हो, व सिदाद, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ। अब आइए कुरान में देखें तैयब व ताहिर ज़िंदगी के कुछ नमूने। आप ये कहेंगे कि ये मासूम हस्तियाँ हैं, हम इनको फॉलो नहीं कर सकते, तो कुरान ने कुछ नमूने दिए हैं। मैं एक नमूना हयात तैयबा का और एक नमूना हयात खबीसा का पेश करूँगा, इसलिए कि हयात खबीसा अपोज़िट है, ज़िद है हयात तैयबा की। जब आपको ज़िद मालूम हो जाएगी तो ख़ुद ब खुद आपको हयात तैयबा भी मालूम हो जाएगी। हयात तैयबा के लिए बेहतरीन मिसाल कुरान पेश करता है, वो जनाब लुकमान हकीम। जनाब लुकमान हकीम के सिलसिले में कुरान मजीद में एक पूरा सूरा है, सूरा नंबर 31, पूरा सूरा है जनाब लुकमान का। ये अक्सर उलमा और मुफस्सरीन बयान करते हैं कि जनाब लुकमान जो है नबी नहीं थे, रसूल भी नहीं थे, उन्होंने ऐसी पाको पाकिज़ा और तैयब व ताहिर ज़िंदगी गुजारी कि जिसको खुदा ने ऐसा पसंद किया कि क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए इनको नमूने अमल करार दे दिया। ज़बान पाक, दिल पाक, अमल पाक, पूरी ज़िंदगी तैयब व ताहर। जब भी ज़बान से कोई कलमा जारी होता तो पाक ज़बान से, आंखें भी कभी उठाकर किसी को देखते नहीं थे, ज़बान भी बिला वजह इस्तेमाल नहीं करते थे, गुनाहों से अपने आप को बचाते थे, बहुत सीधी सादी ज़िंदगी। यही अफ्रीका के रहने वाले, इसी अफ्रीका के, जिस अफ्रीका में हम और आप हैं अभी, इसी अफ्रीका के रहने वाले हैं, सियाह, सियाह पोस्त, बहुत सादी सीधी ज़िंदगी। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि ने इनकी ज़िंदगी का एक रुख पेश किया है जिसकी वजह से इनको तैयब व ताहिर ज़िंदगी मिली। देखिए, जब आप पूरी ज़िंदगी को तैयब व ताहिर बनाएंगे तो उसका ये असर होगा कि खुदावंद आलम आपकी ज़बान से हिकमत के चश्मे जारी कर देता है। जब दिल पाक होता है ना, जब दिल से कोई बात निकलती है ज़बान से, तो वो हिकमत बन जाती है, हिकमत, विजडम, इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। तो ख़ास सिफत इनमें क्या थी? जनाब लुकमान इस्लाह ज़ातुल बैन करते थे, यानी क्या, दो आदमियों के दरमियान सुलह कराते थे। ये उनकी ज़िंदगी का एक अहम कारनामा, ये आइंदा आने वालों की नस्लों के लिए बेहतरीन नमूना। मोमिन वो है कि जो दो मोमिनों के दरमियान बेहतरीन अमल है, बहुत ज़्यादा सवाब इसका है। नमाज रोज़े से मोमिन पहचाना नहीं जाता, बल्कि इस तरह के मामलात से मोमिन पहचाना जाता है। बाज़ लोग जो है लड़ने से ज़्यादा लड़ाने में मज़ा लेते हैं, मियाँ बीवी को लड़ा दिया, भाई भाई को लड़ा दिया, दोस्त से दोस्त को लड़ा दिया, ख़ानदान से ख़ानदान को लड़ा दिया। नहीं, ये

सेवा नहीं है, मोमिन का सेवा नहीं है। मोमिन के लिए बेहतरीन अमल ये है, इस्लाह ज़ातुल बैन जो है एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, बल्कि कशरा होनी चाहिए। मोमिनों के दरमियान आपस में सुलह कराना एक ऐसा सवाब है जिस सवाब का कोई दूसरी नेकी मुकाबला कर ही नहीं सकती। जनाबे लुकमान के सिलसिले में बताया जाता है कि ये जब भी घर से बाहर निकलते, देखते कि कोई दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं या इख्तिलाफ़ रखते हैं, तो वो दरमियान में पहुँच के इस्लाह कराते थे, उनके दरमियान सुलह कराते थे। ये सुलह कराना खुदा को इतना पसंद आया कि इनको हिकमत दे दी गई। लड़ाना ये मोमिन का सेवा नहीं है। जनाबे लुकमान की एक वसीयत में बयान करके आगे बढ़ता हूँ, मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, इनके लिए खुद एक अशरा चाहिए। जनाबे लुकमान की वसीयतें, अपने बेटे को इन्होंने जो वसीयतें की हैं, बहुत ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू है इसमें। एक वसीयत की तरफ जनाबे लुकमान की मैं इशारा किए देता हूँ। जनाबे लुकमान ने तैयब व ताहिर ज़िंदगी के लिए अपने बेटे से वसीयत की, बेटा अच्छा खाओ, अच्छे बिस्तर पर सो, अच्छे घर में रहो। बेटे ने पूछा, बाबा हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं, आप अच्छा खाने को कह रहे हैं, अच्छा बिस्तर पे सोने को कह रहे हैं, अच्छे घर में रहने को कह रहे हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। देखिए सुनिएगा, बहुत खूबसूरत तैयब व ताहिर ज़िंदगी के लिए। तो जनाब लुकमान ने कहा, बेटा मेरा मकसद ये है कि अच्छा खाने से मकसद ये कि जब भूख लगे तब खाओ, हर खाना अच्छा लगेगा। जब इंसान को भूख लगे ना, तब वो खाने की तरफ जाए, तो जो भी खाएंगे आप वो अच्छा लगेगा। जब आपको भूख नहीं होगी, आप खाने का जब मन नहीं रखेंगे, तो आप जो भी आप टेबल में रखा है ये अच्छा नहीं है, ये बदलो वो बदलो, ये सारी चीज़ें उस वक्त आती हैं जब इंसान सैर रहता है, पेट भरा रहता है, तो उसे किसी चीज़ की तरफ रग़बत नहीं रहती। तो जनाब लुकमान ने कहा, बेटा अच्छे बिस्तर पर सो। बेटे ने कहा, बाबा हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि जो अच्छा बिस्तर ख़रीदें। तो जनाब लुकमान ने कहा कि जब अच्छी तरह से नींद आए तो सोना, हर बिस्तर अच्छा लगेगा। जहाँ भी सोगे तुम्हें अच्छी नींद आ जाएगी, वही बिस्तर तुम्हें अच्छा लगेगा। का अच्छा घर कैसे बनाए? तो जनाब लुकमान ने कहा कि अच्छे पड़ोसियों के दरमियान रहो, जिस घर में भी रहोगे वो घर तुम्हें अच्छा लगेगा। ये जनाब लुकमान हकीम की कुछ नसीहतें हैं। तो ये तैयब व ताहिर ज़िंदगी क़यामत तक आने वाले नस्लों के लिए हयात तैयबा। हमारे पास जो आमाल है ना, हर एक अमल का असर है। जनाब सिद्दीक़ ताहरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने खुतबे फिदक में भी इसकी तरफ इशारा किया है कि नमाज को क्यों वाजिब करार दिया गया, रोज़े को क्यों वाजिब करार दिया गया, ज़कात को क्यों वाजिब करार दिया गया। फ़लसफ़ा आमाल का और इबादतों का फ़लसफ़ा बयान किया है। नमाज रूह की तहारत, रोज़ा बदन की तहारत, और ज़कात माल की तहारत, और मोहब्बत अहले बैत दिल की तहारत। ये वो चीज़ें हैं कि जिसके ज़रिए से इंसान की ज़िंदगी पाको पाकिज़ा होती जाती है। अब आइए हयात खबीसा का एक नमूना कुरान से, वो कारून की ज़िंदगी। कारून जनाब मूसा के ज़माने में एक बहुत बड़ा सर्वतमंद और मालदार इंसान, इल्मे कीमिया का जानने वाला, केमिस्ट्री जानने वाला बहुत बड़ा आलिम। वो जनाब मूसा का रिश्तेदार भी था, कुछ लोग बताते हैं कि वो चचाजाद भाई भी था। उसने ज़िंदगी गुजारी, बहुत पैसा हासिल किया अपने इस इल्म के ज़रिए से। ये हयात खबीसा का नतीजा देखिए, पहले तो ईमान नहीं लाया था, बाद में जनाब मूसा पर ईमान लेकर आया, और ईमान लाने के बाद जो उसकी दौलत थी, उसकी दौलत की कोई इंतहा नहीं थी। सर्वत दौलत इतना उसने जमा किया था कि कुरान कहता है कि ऊती ना हो, हमने उसे अता किया मिनल कुनूज अन्ना मफातिहा हो, इतने ज़्यादा ख़जाने हमने अता किए कि जिन ख़जानों की कुंजियों को 40 या 70 से ज़्यादा आदमी उलिल कुव्वा साहिबान कुदरत उठाते थे। चाबियां सिर्फ, ख़जाना नहीं, उनके ख़जानों की चाबियों को, कुंजियों को 40 या बाज़ उलमा बयान करते हैं 70 ताकतवर लोग उठाते थे। आप अंदाज़ा करें कि कितना ख़जाना रहा होगा, कितना माल रहा होगा, कितनी सरवत रही होगी। जनाबे मूसा को हुक्म आया, उम्मती था जनाबे मूसा का, ईमान ला चुका था जनाबे मूसा पर, जाओ ज़कात वसूलो, ये ज़कात तुम्हारे माल

0: तुम और डुलडुल अपने आपे में नहीं हो, क्या हुआ है मुख्तार?
1: पता नहीं उमरा, आज हैवान खामखा बेताब हो रहा है।
0: अब उमरा मुख्तार की राजदार नहीं रही?
1: क्या मतलब?
0: मुझे लगता है तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो मुख्तार। अगर मैंने भी ऐसा ही किया तो फिर गिला मत करना।
1: तुम तो शक नहीं करती थी उमरा, ये कैसी बेतुकी सोच है?
0: बेतुकी सोच है? जब तुम नहीं होते तो मैं दुलदुल की हालत देखकर मुख्तार की हालत का पता लगाती थी। जब कभी तुम्हारे साथ कोई हादसा रुनुमा हुआ है या तुम्हारे दिल में कोई परेशानी रही है, यह हैवान हर उस मौके पर बेकरार हुआ है। गोया दुलदुल की रूह की गिरा मुख्तार की रूह के साथ बांध दी गई है।
1: कैसी बातें कर रही हो उमरा, ये जानवर आज किसी तकलीफ में है, है कि उसके पास जबान नहीं के बता सके।
0: तुम तो जबान रखते हो ना, तुम ही मुझे कुछ बता दो।
1: बस भी करो उमरा, ऐसा न करना कि मैं जाहिलियत के अरबों की तरह ये यकीन कर लूं कि औरतों से अक्ल की तवक्को नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो कितनी ही बुलंदी पर पहुंच जाए।
0: तो बिलाआखिर मुख्तार ने नकाब हटाकर ये दिखाई दिया कि वो जाहिल अरबों में से है। क्या ही अच्छा होगा कि हुर्रा को जिंदा दफना दो, ताकि साबित कर सको कि तुम भी उन्हीं में से एक हो। क्या पूरी जिंदगी जहाद करने के बाद तुम्हें यहाँ पहुँचना था मुख्तार?
1: उमरा, मेरे पांव की जंजीर मत बनो।
0: बहुत खूब, तो फिर तुम उम्रा से साथ देने की तवक्को मत रखना।
1: धमकी दे रही हो मुझे?
0: उम्रा और धमकी? जिस वक्त मेरा बाप कूफे का अमीर था और मेरी धमकी का असर हो सकता था, उस वक्त तुम्हें धमकी ना दी। अब जबकि मैं एक आम सी औरत हूँ और मेरा बाप इख्तदार गंवा चुका है, अब मेरी धमकी क्यों कर किसी मुख्तार जैसे ताकतवर शख्स को डरा सकती है?
1: तुम्हारी हालत शायद ठीक नहीं है।
0: अच्छा, शाबाश, अच्छा है, समझ आ गया।

0: किस चीज से डर रहे हो?
1: मक्का की खबरों से। अगर मोहम्मद हनफिया ने मेरी तायद न की तो मेरे साथी मुझे तनहा छोड़ देंगे।
0: तुम्हारी तायद क्यों नहीं करेंगे जबकि उन्होंने तुम्हें हुक्म लिख दिया है?
1: मुझे उस वक्त हुक्म दिया था जब जंग ऐनुल वर्दा नहीं हुई थी। मुझे डर है कि मोहम्मद हनफिया ऐनुल वर्दा की कत्लगाह से गमजदा और दागदार होंगे और उन्हें यह पता चलेगा कि मैं सुलेमान के साथ नहीं था तो मेरे सर से अपनी हिमायत न उठा लें।
0: बस यही?
1: हाँ यही।
0: उम्रा की जान की कसम।
1: जाने उम्रा की कसम, मेरे ख्याल से हुर्रा के रोने की आवाज है।
0: मैं जाऊं इससे पहले कि वो कुछ तोड़ दे।

0: हमें अबू इसहाक के झूठ का खौफ था। अब जबकि आपकी राय ऐसी है तो इराक के तमाम शिया मुख्तार के शाना बशाना क्याम करेंगे और उन बंदरों को जो मिंबरे रसूलुल्लाह पर बैठे हुए हैं उन्हें नीचे घसीट देंगे और अहले बैत रसूल के खून नहक का बदला लेकर रहेंगे।
1: आहिस्ता बात कीजिए मुसलमान, ये मक्का है, हम जुबैरियों के हिसार में हैं।
0: खुदा इन जुल्म के बानियों को नेस्तो नाबूद कर दे।
1: आमीन।

0: Doida. तुम बेफिक्र रहो, मेरी हालत कुछ बेहतर हो जाए तो तुम्हारे तुम्हारे अमीर के दीदार को आऊंगा।
1: आयत पढ़ के उसे अच्छा समझाया।
2: क्या मतलब है?
1: अगर तुम आयत नहीं पढ़ते तो वो जरूर आता।
2: तुम अंधे थे जो उसका कापना नहीं देखा? देखा नहीं कि ऐसी हालत में था वो?
1: क्यों नहीं, मुख्तार का तो सिर्फ जनाजा नजर आ रहा था। डरो मत ज़ायदा, मैं भी मुख्तार की तरफ मायल हूँ। मुतमईन रहो, मैं अमीर से कुछ नहीं कहूंगा।
2: तुम तरफदार मुख्तार हो?
1: जीत मुख्तार की ही है ज़ायदा।
2: कैसे?
1: अब तक जितने भी हाकिम कूफे में आए हैं, मुख्तार उन सबसे ज्यादा होशियार है। सब ने उससे दुश्मनी रवा रखी और सब उसे मारना चाहते थे, मगर कोई कामयाब ना हुआ। मुझे यकीन है कि मुख्तार अनकरीब कूफे पर हुक्मरानी करेगा।
2: इस तरह तो वाकई, जब मुख्तार के पास तुम लोगों की तरह ना दिखने वाला लश्कर हो तो यकीनन जीत उसी की है।
1: तुम भी उस ना दिखने वाले लश्कर की फौजी हो ज़ायदा।
2: अचानक मैंने देखा कि उसे राशा हो गया, उसका रंग हल्दी की तरह पीला हो गया। वो जिंदान में भी अक्सर इस हालत से दो चार हो जाता था। बज़ाहिर कोई भयानक सी बीमारी हो गई है उसे, अब वो कुछ करने के लायक भी नहीं रहा। मुख्तार का काम तमाम हो गया है अमीर।
3: मुख्तार को कोई बीमारी नहीं है ज़ायदा, जो कपकपी गैब से उस पर आरिज हो गई थी वो एक चाल थी। वो तुम्हें धोखा देना चाहता था जो दे चुका।
2: जब उसका ये दावा है कि उसके ना दिखने वाले फौजी हैं तो भला उसे हीले की क्या जरूरत है अमीर? शक नहीं कि मुख्तार एक दलेर आदमी है, मगर उसकी बीमारी हीला नहीं था। क्या हीले से ऐसा काम किया जा सकता है कि चेहरे का रंग उड़ जाए? राशा तो शायद हीला है, ये बात मानने की है, मगर रंग उड़ जाने का क्या करें?
3: बहुत खूब। जब ज़ायदा कह रहा है कि मुख्तार बीमार था तो वो यकीनन बीमार था। छा सकते हैं आप लोग।

0: ताज्जुब है, तुम बैठे क्यों हो? उठो इब्राहिम, मेरे मौला हुसैन तुम्हारे मुंतजिर हैं।
1: मुझसे नहीं होता अब्बास, मैं जमीन में धंसा हुआ गिरफ्तार होकर रह गया।
0: ये मुनासिब नहीं है कि तुम मालिक अश्तर के बेटे होते हुए कर्बला के काफले को ना पहुंचो। उठो इब्राहिम, अपना हाथ मुझे दो। उठो।

0: इब्राहिम, हम नखई कबीले के जवान हैं, कोई दुश्मन नहीं। तुम हमारे सरदार हो, हम आपसे हुक्म लेने आए हैं।
1: अपने बूढ़ों से पूछो, उन्हें पता है क्या करना चाहिए।
0: हमारे बड़े चाहते हैं कि हम खेती बाड़ी करें और भेड़े चराएं।
1: ये तो बहुत अच्छा है, वैसे भी जमीन और रेवड़ में बरकत होती है।
0: कूफे के तमाम शिया मैदान में उतर आए। क्या यह रवा है कि कबीला नखई के नामी ग्रामी जवान खेती बाड़ी और रेवड़ में मसरूफ रहें?
1: तुम लोगों के पेट भर चुके, जब भी जोश मार रहे हो। मेरा किसी से लड़ने का कोई इरादा नहीं है,
0: अपने इमाम मजलूम हुसैन के कातिलों से भी नहीं।
1: बात सुनो नासिफी, मैंने इससे पहले भी तुम लोगों के बुजुर्गों से इत्माम हुज्जत की है। मेरे इमाम शहीद हुसैन के वारिस हजरत सज्जाद हैं। जब तक उन्होंने जिहाद का हुक्म नहीं दिया, नखई कबीले की तलवार म्यान में रहेगी। अगर मुझसे मुताल्लिक कोई हंगामा आराई करना चाहेगा तो मैं उससे रिश्ता नाता तोड़ दूंगा।
2: जाओ और इससे ज्यादा मेरे जख्मों पर नमक न छिड़को। जाओ

0: काश मैं तुम्हारे जख्मों पर मरहम का काम दे सकती। तुम अपने साथ क्या कर रहे हो इब्राहिम?
1: मेरे पांव जमीन पे गड़ चुके, मैं सरकर्दा हो गया। अपने आप को उस बूढ़े की तरह समझ रहा हूं जिसके जिसके पांव कब्र में लटके हुए। मैं क्यों कुछ नहीं कर सकता? के अश्तर के बेटे की तलवार को जंग लग गया है। अली का मुरीद और आशिक उस शहर में कैसे जी सकता है जिसने उसके मौला के सर पे जर्फ लगाई हो और उनके बेटे का सर नेजे पर चढ़ा के उसके गली कूचों में फिराया गया हो। कितनी जहरीली फिजा है कूकी की।
0: बुखार से तप रहे हो, तुम्हें ठंड लग जाएगी।
2: राहिला, इसे बुखार है।
0: उठो, मुझे तुम्हारे पैर धुलाने होंगे। उठो।
1: पैर धुलाने से मेरा बदन तो ठंडा हो जाएगा, मगर मेरी जान की आग का क्या करोगी?
0: तुम्हारी जान की आग को भी महार कर दूंगी।

0: हाथ पर हाथ रखकर ये नहीं देख सकती कि मेरा शौहर किसी शम्मा की तरह पिघलकर पानी हो जाए। अली के खुदा की कसम, अगर तुम नहीं माने तो मैं खुद बारे सफर बांध लूंगी ताकि मदीना जाकर मौला सज्जाद से हुक्म ले सकूं।
1: हौसला रखो, करीब जख्मों की दवा मिलने वाली है।
2: ज़ायदा इब्ने कुद्दामा है, कूफे के नए हाकिम की तरफ से कोई पैगाम लाया है।
1: मेहमान हबीबे खुदा होता है, आने दो।
3: अमीरे कूफा आपको कूफे में शियों का पेशवा समझते हैं, वो चाहते हैं कि मामलात को चलाने में आपसे मशवरा करें। वो शियों के मुतालबे को बरहक समझते हैं और वो ये चाहते हैं कि आपकी मदद से कातलाने हुसैन का बदला लें। वो चाहते हैं कि आप उनसे मिलने आए ताकि इस अहम काम में उनकी मदद करें।
1: तुम मुख्तार की चचाजात भाई हो?
3: जी हाँ।
1: मैंने सुना है तमाम शिया कबाइल के सरदारों ने मरहूम सुलेमान के बाद मुख्तार की तरफ रुजू किया है। तुम उसके चचाजात भाई हो, अपने अमीर के हुजूर उसकी पेशवाई का दिफा क्यों नहीं करते?
3: सियासत ने मुझे ये सिखाया है कि अपनी दस्तार का दिफा करूं जनाबे वाला।

0: मैं एक शर्त पे आप लोगों के कयाम में साथ देने के लिए तैयार हूं।
1: कैसी शर्त इब्राहिम?
0: कयाम की सरदारी मेरे हाथ में दे दीजिए।

0: अरे अरे, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे? क्या कर रहे हो हाजी साहब?
1: हमने तुम्हारे बारे में बदगुमानी से काम लिया था अबू इसहाक। सैयदो सरदारो सरकार ने हमारी हिदायत फरमाई, न मुख्तार झूठा था और न वो हुक्म जाली।
0: सैयद हैदर कर्रार के फर्जंद अर्जुमंद हैं। अगर मैं ये कहूं कि वो हाथ जिसने उस हुक्म पर दस्तखत किए और वो हाथ जिसने उसकी ताहिद की वो मौला अली के हाथ और जबान थे, तो यकीन करोगे?
1: अगर मुख्तार ये कहे कि नमाज ज़ोहर अंधेरी रात में होगी तो मैं यकीन कर लूंगा।
2: तुम गुशा नशीन हो जाओगे तो तुम्हारे रकीब मैदान ले जाएंगे। जब इब्राहिम अश्तर मैदान खाली छोड़ देगा तो जाहिर है मुख्तार सकफी मैदान का मुजाहिद बन जाएगा। तुम कहां, मुख्तार कहां? तुम उस कबीले के सरदार हो जो तुम्हारे बाप के हवाले से इराक का शहंशाह है। हैफ है कि ये सरदारी सकफी कबीले को मिल जाए। मुख्तार इराक की बादशाहत का ख्वाब देख रहा है। अगर वो खून हुसैन का इंतकाम लेना चाहता तो बैत सुलेमान कर लेता और ऐनुल वर्दा के मक्तल में उसको अकेला ना छोड़ता।
3: अबकुत, आया तुम अमीर कूफा का पैगाम देने आए हो या मजम्मत मुख्तार करने आए हो?
2: अमीर कूफा बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं ताकि तुमसे बात करें। उनके बुलावे पर भरोसा क्यों नहीं करते इब्राहिम?
3: रुको, मैं तैयार होकर आता हूं।

0: क्या तुम वाकई अमीर गुफा के दीदार को जा रहे हो?
1: तुम्हारी नजर में इसमें कोई ऐब है?
0: ऐब से खाली भी नहीं है। तुम मुख्तार पर शक करते हो क्योंकि उसने मक्के में जुबैरी खलीफा की बैत की है। अब तुम से वही खता सरजद होने वाली है जो मुख्तार ने की थी।
1: मैं जानता हूँ राहिला, महाल है कि आले जुबैर जंगे जमल का वाकया भूल जाएं और आले अली से दुश्मनी खत्म कर दें। मैं बैत करने नहीं जा रहा, मैं ये देखने जा रहा हूं कि वो क्या चाहते हैं।
2: इब्राहिम, मुख्तार सकफी आया है अपने आवान व अंसार के साथ।
1: खुदावंदे रहमान और रहीम के नाम से, मोहम्मद महदी की तरफ से इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तरे नगई की जानिब खुदा का दुरूद हो आप पर। अम्मा बात, मैं मुख्तार को जो मेरा वजीर और अमीन है आपकी तरफ भेज रहा हूँ और उसे हुक्म दिया है कि मेरे दुश्मनों से जंग करे और मेरे ख़ानदान के इंतकाम के लिए क़याम करे। तुम और तुम्हारा कबीला और मानने वाले उसका साथ दो और क़याम करो। अगर मेरे बुलावे को कबूल करते हो और मेरे वजीर का साथ देते हो तो तुम्हें मेरी नज़र में ख़ास फजीलत मिलेगी और सिपाहियों के अमीर तुम होगे, और जो इलाका कूफा से शाम के इलाकों तक तुम फतह करोगे वो तुम्हारी ज़ेर निगरानी रहेगा। मैं इस वादे की ज़मानत कसम और अहद से देता हूँ, अगर मेरे हुक्म पर सर झुका लोगे तो खुदा के नज़दीक क़ुर्ब पाओगे, और अगर मेरी बात को रद्द कर दोगे तो ऐसी सख्ती से दो चार हो जाओगे कि हरगिज़ उससे रिहा ना हो पाओगे। ये खत सैयद ने खुद आपको दिया है?
3: नहीं, मैंने उन्हें खत लिखा और गुजारिश की कि तुम्हारे लिए खत लिखें, और सैयद ने यह खत लिखा है।
1: मगर मेरी तो सैयद से खतों किताबत चलती रहती, ये खत उनके दूसरे खतूत की तरह।

0: मैंने हुज्जत तमाम कर दी। अच्छा है कि खुदा मुझे शक करने वालों और बदगुमान लोगों से बेनियाज फरमाए।
1: रुक जाओ अबू इसहाक़,

0: आपकी दुआएं हैं इब्राहिम। लकड़ी छू के कहता हूं, आज बहुत पुरसकून लग रहे हो। खुदा का शुक्र है। जब मैं देखता था कि अश्तर का शेर बेटा मैदान में नहीं आता था तो मुझे गुस्सा आता था। कूफे पर सरदारी करने के हकदार सिर्फ तुम हो।
1: कूफा के दारुल इमारा और अमीर की क्या खबरें?
0: कूफे का महल आज एक मुसाफिर खाने की तरह हो गया इब्राहिम। जो भी आता है वो जानता है कि एक रात का मेहमान है।
1: कूफे को ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो इसकी मिट्टी की बू को पहचानता हो, गाय के दूध से उसके सींग निकले हों और दरियाए फुरात का तैराक हो।
0: खुदा की कसम कूफे और कूफियों से तुम ही निपट सकते हो इब्राहिम। काश तुम मुख्तार की बात ना करते इब्राहिम। मुझे तो यकीन नहीं आता कि तुम एक जाली खत के आगे कैसे तस्लीम हो गए।
1: वो खत जाली हो या ना हो मेरे लिए एक ही बात है वक्त। मैं खत के आगे तस्लीम हो गया ताकि शैतान को मगलूब कर सकूं।
0: कौन सा शैतान इब्राहिम? मुख्तार एक जाली खत के जरिए तुम्हारे कबीले और तुम्हारे इक्तदार को दरहम बरहम करना चाहता था। तुमने अली के बेटे के हुजूर से हुक्म क्यों नहीं ले लिया?
1: रहने दो अबाकुत, मुख्तार के लिए रकीब तलाश करना अच्छी सोच है, मगर अपने अमीर से कहो कि अश्तर के बेटे पर पैंतरे नहीं चलने वाले। बिस्मिल्लाह।

0: इस जंगी लिबास में और इस मुस्कुराते हुए चेहरे में थोड़ा सा उस मर्द की मानिंद हो गए हो जिसके किस्से मेरी माँ मुझे सुनाती थी।
1: मुझे हमेशा तुम्हारी माँ की कहानियों के मर्दों से हसद था राहिला।
0: मर्दों नहीं इब्राहिम, मेरी माँ की कहानियों में एक ही मर्द था जिसका नाम मालिक अश्तर था, आँख के जख्म के साथ।
1: तुम कहो तो मैं भी अपनी आँख पर जख्म लगा लेता हूँ।
0: चाहे कोई भी हो इब्राहिम। तुम अपनी मिसाल आप हो इब्राहिम। चाहे कोई भी हो, मालिक की शबी नहीं बन सकता। जब मैंने सुना कि मैं उनकी बहू बनने वाली हूँ तो कुछ ख्वाब सा लग रहा था, कुछ कुछ ख्वाब के जैसा। तुम्हें देखकर बहुत हैरान हो गई थी। तुम्हें उस मर्द की जरा बराबर भी शबाहत नहीं थी जिसके किस्से अशार में मेरी माँ मुझे सुनाती थी। उन अशार वाला मालिक एक मुस्कुराता हुआ शख्स था जबकि उसके दिल में एक बड़ा गम छुपा हुआ था।
1: मालिक एक बड़ा इंसान था राहिला। इश्क अली ने मालिक को मालिक बना दिया। उस शख्स ने मुस्कुराते रहना मौला अली से सीखा था। यहां तक कि जब रकाब में उनके पांव लरज रहे थे और उनका जिगर पिसरे आस के जहर से टुकड़े टुकड़े हो गया, तब भी मुस्कुराहट से जिक्र अली कर रहे थे। कोशिश करूंगा आज के बाद गंदम के दाने जितना ही सही मालिक जैसा बनूं।

0: अबू इसहाक के पास जा रहा हूँ।
1: ऐसे अकेले? रुको, मैं भी अबा और दस्तार पहन कर आता
0: हूँ। नहीं मेरे भाई, मैं अकेले ही जाऊंगा।

0: मैंने वादा किया था कि किरण के सफर में तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा, तो तुम भी अबाया पहनकर तैयारी कर लो। उमरा, किरण की जीत तक तुम्हें मजबूरन यहाँ से जाना होगा।
1: क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहीं पर रहें?
0: क़याम का ऐलान होने के बाद लफ़्क़ापुरम जगह न होगी। बेहतर यह रहेगा कि हम सब एक ही छत के नीचे रहें।
1: खुदाया, मुझे हिम्मत दे के मैं नारिया के साथ रह सकूं।

या रातों पर चमकना होगा ताकि वो चांदनी रातें बन जाए। अब्बास ने जब ये ताबीर सुनी तो खामोश रहा। नकल है कि जब अब्बास अलकमित पे पहुंचा तो शदीद प्यासा था, मगर उसने पानी नहीं पिया।

एक रात अब्बास पसीने में नहाया हुआ नींद से घबरा के उठा, बार बार अपने हाथों को और मुझे देखता था। मैंने पूछा, कोई ख्वाब देख लिया? उसने कहा हाँ। मैंने पूछा, क्या ख्वाब देखा? टूटती हुई सांसों में मुझे जवाब दिया, इब्राहिम मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे हाथ नहीं, मेरे हाथ खो गए थे। मैं अपने हाथों को ढूंढ रहा था कि अचानक मैंने गिद्ध के जैसा एक परिंदा देखा जिसकी चोंच में मेरे हाथ थे। वो मेरे हाथों को खाना चाहता था। मैंने उसे पत्थर से मारना चाहा, मगर मुझे ख्याल आया कि मेरे पास तो पत्थर उठाने के लिए हाथ नहीं। मैंने चिल्ला के कहा, ओ लाशखोर, मेरे हाथों को मत खाओ, वो हाथ मेरे हैं। अचानक गिद्ध बोलने लगा, अब्बास तुम इन हाथों का क्या करोगे जब तुम्हारे पास इतने प्यारे पर हैं? मैं भूखा हूं, मजबूर हूं, मेरे पर टूटे हुए हैं, तुम्हारे हाथ मुझे सेर कर देंगे। तुम अपने उन खूबसूरत परों के साथ परवास करो, जाओ आसमान पे उड़ो। जब मैंने सुना कि अब्बास के हाथ काटे गए तो उसके उस रात वाले ख्वाब की हिकमत को समझ गया।

0: दोबारा जिंदा करो।
1: मालिक मरा नहीं है इब्राहिम, मालिक की अश्ता नहीं मरेगा, उसका नाम कयाम कयामत तक शियों के परचम पर लहराएगा। करना होगा कि हम गुम न हो जाएं। दूसरा कदम तय करना है, हमें कूफे को जुबैरियों के चुंगल से निकालना होगा।
0: बड़ी शिद्दत से मुवाफिक हूं।
1: जुमेरात की शब रबी की 14वीं को जंग के नकारे बजा देंगे, कैसा रहेगा?
0: बहुत अच्छा है, मगर इस मखसूस रात में कोई हिकमत छुपी हुई है क्या?
1: रबी की 14वीं को चांद पूरा होगा इब्राहिम, अब्बास इब्न अली की नियत से और उस वाके की बरकत से जो उसके बारे में तुमने मुझे सुनाया है। 14वीं की रात चांदनी में जब अब्बास आसमान पर मुकम्मल देखा जाएगा, हम दुश्मन पर हमला कर देंगे। हमारे पास कुछ 8-10 दिन की मोहलत है कि अपने लश्कर को तैयार कर सकें, और हाँ, कुछ हंगामी हालात के हमलावरों की जरूरत है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मैदान में उतर आएं और मुजाहिमतकारियों से दुश्मन को तकलीफ पहुंचाएं। इन फौजों की तैयारी का काम भी तुम्हारे हाथों को चूमता है।
0: जो हुक्म सर आंखों पे, हमीर मुख्तार।

0: आओ बच्चों, हम सब जालिमों से इजहार बेजारी करें, सैयदा जैनब ने जो की वो अजादारी करें, बावफा हैं शह के मकसद से वफादारी करें, यूं इमाम वक्त के आने की तैयारी करें, तैयारी करें, तैयारी करें।
1: आ रही है आज भी मैदान से हल मिल सदा।

28 सफर बमुताबिक 1939 16 जुलाई बरोज बुध दोपहर के वक्त। मशहद के इस सादा से घर में जवाद और खदीजा के यहां दूसरा बच्चा पैदा हुआ। वो लड़का था, उसका नाम अली रखा।

0: हम आठ बहन भाई थे, दो माओं से, क्योंकि हमारे वालिद की पहली बीवी से तीन बच्चे थे और वो तीनों बेटियां थीं। पहली बीवी के इंतकाल के बाद मेरे वालिद साहब ने एक खानम से शादी कर ली, वो मेरी माँ थी। हम अपनी माँ से पांच बहन भाई थे, एक बहन और चार भाई। इन पांच अफराद में से मेरा नंबर दूसरा था।
1: घर में एक छोटा सहन था। सहन गुजरने के बाद एक दरवाजा था। बावर्ची खाना दाएं तरफ था। और एक हाल बाईं तरफ था।

यहां से एक सीढ़ी एक सुतून के गिर्द घूमकर ऊपर को जाती है, जो कि वालिद के खसूसी कमरे से जा मिलती है।

0: मेरी अम्मी की दादी जिन्हें हम बीबी कहते थे वो मेरी अम्मी से बहुत प्यार करती थी और हम चूंकि उनकी औलाद थे हम सबसे भी बहुत प्यार करती थी। जब हम वहाँ जाते थे तो वो हमें पैसे दिया करती थी। उस जमाने के हिसाब से एक कुरून में 10 शाही हुआ करती थी। मुझे, मेरे भाई और बहन को 1-2 शाही देती। फिर हम उससे कभी रात का खाना मुहैया करते और कभी हम उससे दूध और रोटी खरीद लेते।
1: खानम खदीजा सिलाई कढ़ाई में बहुत सलीका रखती थी। अली और उसके भाइयों नेज बच्चों के बाप के कुछ पुराने कपड़े भी उन्होंने खुद सिए थे। इसी तरह सिरहानों के गिलाफ भी वो अपनी सिलाई मशीन के साथ खुद सिया करती थीं।
0: मुझे याद है एक मर्तबा मेरे बाबा ने सर्दियों में मेरे लिए एक जूता खरीदा और घर ले आया। जब मैंने जूता पहना तो मुझे छोटा था। वालिद साहब चले गए। मैं खुश था कि शायद उसे तब्दील करवा कर लाएंगे या नया खरीद कर लाएंगे। लेकिन जब वो घर आए तो उन्होंने कहा, जूते का पीछे का हिस्सा काट दो, ये तुम्हारे पाँव में पूरा आ जाएगा।

सरशूर मशहद के कदीमी बाजारों में से एक है। यहाँ इस इमाम बारगाह में, जो कि पुराने वक्तों में मदरसा हुआ करता था, आकाए खामनाई ने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की थी। इस मदरसे का नाम मरकज़े आमोज़िश दियानती था। मशहद में ये वाहिद इस्लामी मदरसा था। इस मदरसे के तालिबे इल्म उल्मा दीनदार घरानों या अफराद के बच्चे थे।

पहले दिन जब मुझे प्राइमरी स्कूल ले जाया गया, बहुत अच्छा दिन था। अलबत्ता बहुत शोर था, बच्चे खेल रहे थे, मैं भी उस दिन बहुत खेला। हमारी जमात का कमरा बहुत बड़ा था, लेकिन तादाद ज्यादा होने की वजह से छोटा लगता था। पहली जमात के बच्चों की तादाद ज्यादा थी, शायद 30 या 40 शागिर्द थे। जी हाँ, पहला दिन खुशी और मस्ती का दिन था। उस दिन से मुतालिक कोई गलत बात मुझे याद नहीं।

0: वो 13 साल के थे कि जब उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, जबकि उस वक्त उनके कुछ शागिर्द उम्र में उनसे बहुत बड़े थे। सनो साल और कद काट में फर्क 22 बनता था कि वो कुछ हिचकिचाएं, लेकिन वो हमेशा अपने काम को पाए तकमील तक पहुंचाते हैं।
1: जब मैं पहला दर्स कहकर बाहर आया तो मुझे सही तरह से सन याद नहीं है, लेकिन मालूम हो सकता है कि कौन से साल थे। तकरीबन 13 साल मेरी उम्र थी जब मैंने पहला दर्स दिया। मैं अनमुजजो समदिया पढ़ रहा था, जबकि मैंने शरा अमसला और सरफे मीर से पढ़ाना शुरू किया। एक मस्जिद थी जिसमें मशहद के दो जाकिर हजरात मेरे वालिद के पास आए थे और वो चाहते थे कि मेरे वालिद के पास पढ़ें। यही शरा अमसला और सरफे मीर। मेरे वालिद ने कहा, इस काम के लिए आपको मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं, मेरा बेटा सैयद अली काफी है।

0: आई और उनके वालिद की उम्र में बहुत ज्यादा फर्क था, यानी 45 साल का फासला था। आकाए जवाद बुलंद पाया मुज्तहिद थे, उन्होंने बड़ी सुतूह के शागिर्दों को पढ़ाया था, लिहाजा उनकी शान के मुताबिक ना था कि हौजवी इब्तदाई मराहिल के तालिब इल्म को पढ़ाएं। लेकिन आकाए जवाद ने अपने तीनों बेटों मोहम्मद, अली और हादी को इब्तदाई मराहिल में पढ़ाना शुरू किया। अगर आकाए खामनाई के वालिद गिरामी का वजूद ना होता तो वो उसूल और फिकह के मरहले को इतनी जल्दी कभी तय ना कर सकते थे। इस मरहले में आकाए खामनाई अपने बड़े भाई के हमरा बाबा के शरहुल लुमा के दर्स में शामिल हो गए। ये चीज बाइस बनी कि वो शिया फिकह का एक मुकम्मल दौरा तेजी से पढ़ लें।
1: जब हम हज के बाब पर पहुंचे, उस वक्त वालिद साहब बड़े भाई को शरहुल लुमा में से किताब हज पढ़ा रहे थे। बाबा ने मुझसे कहा, आप भी शरहुल लुमा के दर्स में शिरकत करो, क्योंकि मैं शराय पढ़ चुका था। इस बिना पर उनका ख्याल था कि मुमकिन है मैं शरहुल लुमा भी समझ लूं। मैंने पूछा, क्या मैं समझ पाऊंगा या नहीं? उन्होंने कहा, हाँ तुम समझ सकते हो। इसके बाद मैं शरहुल लुमा के दर्स में शिरकत करने लगा और इत्तफाक की बात है कि दर्स मेरी समझ में आने लगा।

0: ये मदरसा नवाब वो जगह है जहाँ आका खामनाई ने शरहुल्लुमा के साथ साथ दूसरी किताबों जैसे कवानीन, मकासिब, कफाया और रसाइल के दुरूस में शिरकत करना शुरू की। आका खामनाई ने मकासिब और कफाया की किताबें मशहद के बेहतरीन असातिज़ा जैसे आयतुल्ला शेख हाशिम कज़वीनी वगैरह से पढ़ी। आका खामनाई ने शेख हाशिम कज़वीनी के पास मरहला सुतू के निसाब में से एक बड़े हिस्से की तालीम हासिल की और बाकी हिस्सा अपने वालिद साहब के पास मुकम्मल किया, और यूं उन्होंने अपने दूसरे हम जमातियों की निस्बत मरहला सुतू जल्दी मुकम्मल कर लिया। इसकी एक वजह ये भी थी कि गर्मियों की छुट्टियों में भी उनका तालीमी सिलसिला जारी रहता था और उनके वालिद जिस किताब की नसीहत करते वो पढ़ लेते। इसी बिना पर और अपने हम जमातियों की निस्बत आका खामनाई मुकदमात और सुतूह के मराहिल को 5.5 साल में मुकम्मल करने में कामयाब रहे। सन 1956 में आका खामनाई ने आयतुल्ला हादी मिलानी के पास दर्स खारिज शुरू किया। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 16 बरस थी और उस कम उम्री में मशहद के दर्स खारिज करने वाले वो एक ही तालिबे इल्म थे।
1: हमारे इसरार पर मशहद में आकाए शेख हाशिम कज़वीनी ने हम कुछ शागिर्दों के लिए उसूल का खुसूसी दर्स खारिज शुरू किया। जब उन्होंने दर्स खारिज कहना शुरू किया तो हमने देखा कि उनके तर्ज तदरीस और आकाए मिलानी के अंदाज़े ताल्लुम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आकाए कज़वीनी बहुत वसी सतह पर तमाम जवानिब को ज़र बहस लाते थे, तमाम अकवाल नकल करते, फिर उन पर तनकीद करते, लेकिन कोई दिलचस्प या नई राय जो शागिर्द को नई जिहाद की तरफ मुतवज्जह करे ताकि उसे किसी जदीद नज़रिए का इल्म हो सके या ऐसा अंदाज़े बयां जो शागिर्द के दिलो दिमाग में उतर जाए, नहीं था। जबकि आकाए मिलानी खुश बयान होने के साथ साथ जदीद नज़रियात रखते थे, इस बिना पर उन्हें आकाए हाशिम कज़वीनी पर तरजीह दी जाती थी।
0: हुज़ा-ए इल्मिया मशहद में क़याम के दौरान आका खामनाई ने आका मिलानी के उसूल के दर्स खारिज में 1 साल और फ़कीह के दर्स खारिज में 2.5 साल शिरकत की। उनकी कोशिश थी कि वो आका मिर्ज़ा जवाद तहरानी के दर्स खारिज में भी शिरकत करें। दूसरी जानिब उस ज़माने में हुज़ा-ए इल्मिया के अंदर फ़लसफ़े की बहुत ज़्यादा मुखालफत के बावजूद आका खामनाई ने शेख सैफुल्ला आयसी और शेख मुश्तबा तबरेजी के फ़लसफ़े और इल्म हिकमत के दर्स खारिज में शिरकत की। सन 1957 में आका खामनाई अपनी वालदा और घर वालों के हमरा नजफ़ अशरफ़ ज़्यारत के लिए गए।

0: इसके बावजूद के सफर तालीम हासिल करने की गर्ज से नहीं था, लेकिन आका खामनाई की कोशिश थी कि हौज़ा इल्मिया नजफ़ अशरफ के तालीमी निज़ाम से आशनाई हासिल करे। यहाँ आका मोहसिन हकीम, अबुल कासिम खुई, महमूद शाहरुदी, मिर्ज़ा बाकर जंजानी, मिर्ज़ा हसन यजदी, याहिया यजदी और मिर्ज़ा हसन बजनूरदी के दर्स हुआ करते थे।
1: इन दुरूस में मुझे जो दर्स बहुत अच्छा लगा एक आयतुल्ला सैयद हकीम का था। रवानी और खुश बयानी की वजह से उनके दर्स में बहुत रवानी थी। उनके फ़िकही नज़रियात भी बहुत उम्दा थे जो किताबों में जिक्र है। और एक आकाए मिर्ज़ा हसन बजनूरदी का दर्स था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उनके फ़िका व उसूल के दुरूस में जाया करता था। उसूल का दर्स रात में हुआ करता था, ज़ाहिरन मस्जिद तूसी में था। जी हाँ, मस्जिद तूसी। फिका का दर्स दिन में हुआ करता था, मेरा ख्याल है कि वो भी मस्जिद तूसी में था। आकाए हकीम भी मस्जिद तूसी में ही दर्स कहते थे।

0: ये सफ़र बाइस बना के आकाए खामनाई नजफ अशरफ में रुक कर तालीमी सिलसिले को जारी रखने के बारे में सोचने लगे। उन्होंने नजफ में रुक कर तहसील इल्म की इजाज़त लेने के लिए वालिद साहब को एक ख़त लिखा, लेकिन वालिद साहब का जवाब नफ़ी में था। इसके बाद वो ईरान वापस आ गए, लेकिन नजफ में मुख्तसर अरसे के लिए हुसूल इल्म की चाशनी का जायका आज कई साल गुजरने के बावजूद भी इनके जहन में है।
1: मरहूम आकाए खुई रिजवानुल्लाह ताला अलैह एक अजीमुल मर्तबत आलमे दीन थे। हकीकत यह है कि हमारे ज़माने के हसनात व बरकात में से एक इस आलम व फकी का बाबरकत वजूद था। फकाहत और इल्म दीन में वो बुलंद मर्तबा रखते थे। वो हमारे ज़माने में थे और हमने उन्हें देखा है। मैं उनके दर्स में जाया करता था। उनके आसार में से जो कुछ शाया हो चुका है, हकीकत है कि बहुत ज़्यादा और वसी है।

इस इमारत में बिल्कुल पहली मंजिल पर कमरा नंबर 85 में नए दीनी तालिब इल्म आकाए खामनाई ने रिहाइश इख्तियार की। यहाँ वो मुताला, तहरीर और तलबा के साथ मुबाहिसा करने में मशगूल रहते थे।

0: उनकी तालीमी मसरूफियत सिर्फ फिक्ह दुरूस ही ना थी बल्कि वो उस दौर में इस्लामी फलसफे के उस्ताद आयतुल्ला मोहम्मद हुसैन तबातबाई के दर्स में जाते थे और शेख हुसैन अली मंतजरी के पास किताब अल असफार और अल अशारात की तालीम हासिल की और 11 साल की उम्र से जो दर्स कहने की आदत बन गई थी उसे कभी तर्क ना किया। उनके दौर में हौज़ा इल्मिया कुम में जो किताबें ज्यादातर पढ़ाई जाती थी वो शरहुल लुमा और कवानीन थी। फिर जब आप मशहद वापस चले गए तो आपने मदरसा नवाब में मकासिब कफाया और रसाइल पढ़ाना शुरू की। आपके दरस मकासिब में 120 शागिर्द शिरकत करते थे और ये बड़े इल्मी हलके के तौर पर जाना जाने लगा था। 1965 से 1975 तक आप मुसलसल तदरीसी सरगर्मियों में मशगूल रहे और कभी भी दुरूस का सिलसिला रुकने नहीं दिया। मगर ये कि जेल में कैद ये शहर बदर कर दिए गए हों, ये तबलीग के सिलसिले में गांव देहात गए हों।
1: जिस उम्र में ये दर्जे इतिहाद तक पहुंच गए थे मेरा ख्याल है कि तकरीबन 25 या 26 साल की उम्र होगी। ये वो बात थी जिसका जिक्र उन्होंने मुझसे नहीं किया, लेकिन उस जमाने में उनकी सलाहियत इस्तेमाल शोहरत रखती थी। वो जब कुम में थे तो आयतुल्ला हायरी ने इस बारे में बात की थी। 1963 में वो अपने बूढ़े बाप की निगहदाश्त के लिए मशहद चले गए। उस वक्त उनकी उम्र 25 बरस थी। आकाए हायरी ने एक साल पहले उनके बारे में बात की थी और कहा था कि आकाए खामनाई बहुत अच्छे सवाल उठाते हैं और बहुत गहरे एतराज़ करते हैं, यानी उनका जहन बहुत वसी है।
0: 1974 में उस्ताद आयतुल्ला हायरी के दरस खारिज में 15 साल तालीम हासिल करने के बाद उस्ताद ने आकाए खामनाई के दर्जाए इज्तिहाद की तस्दीक कर दी। इस तरह मुकदमात से इज्तिहाद तक आपकी तालीम का कुल दौरानिया 20 साल पर मुहित है, जो कि 11 साल की उम्र से 31 साल तक का है।
2: इमाम अली मुसर रजा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया, खुदा की रहमत हो उस शख्स पर जो हमारे अमर हमारी हदीस को जिंदा रखे। ये रावी कहता है, किस तरह हो सकता है कि आपका अमर आपकी हदीस आपके नजदीक अहम बात जिंदा हो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारे उलूम को सीखें, मुआरफे अहले बैत को सीखें, फिर इन्हीं लोगों शौक रखने वाले दिलों तलाश करने वाले अजहान को मुंतकिल करें। अगर लोग हमारे कलाम की खूबियों को जान लें तो जरूर हमारी ही इत्तबा करेंगे।
3: لَتَّبَعُونَا